भारत दी बनी धार्मिक परंपरा दे मुताबिक माघ दा महीना खास महीना है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने माज राग दे इस महावाक दे जो माघ दे महीने दा उपदेश कीता है, सतगुरु फरमान करदे ने माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इसना। इस महीने विच इसनान दी अत महत्ता मनी गई है। प्रयाग इसनान, माघ इसनान, प्रयागराज दे जाके माघ दा माघी दा इसनान बहुत वड्डा पुन मनदे ने। बाकी तीर्थां ते भी माघ दा इसनान, इसके नाल अनेकां पुन फल जोड़े हुए ने, अनेकां संसारिक उपलब्धियां ते अनेकां ही रूहानी उपलब्धियां जोड़ियां हुई ने। इसनान करन नूं ते गुरमत भी प्रेरदी है, और माघ दे महीने कैसा इसनान करना है, इतनी गल स्पष्ट है कि तन ते मन इस साडे कुल दो रूप ने। तन अस्थूल है, मन सूक्ष्म है, तन दिखाई दे रहा है, मन अदृश्य है। तो पानी दिखाई दे रहा है, जो तन दिखाई दे रहा है, ये पानी इस दिसदे होए तन दी मैल नूं दूर कर सकदा है, साफ कर सकदा है, पर मन अदृश्य है। मन तक पानी दी पहुंच ही नहीं है। पानी दृश्यमान है, मन अदृश्य है। दृश्य ते अदृश्य दा संगम नहीं है, जोड़ नहीं है। तो वो जो अदृश्य मन है, वो ते किसी होर ढंग नाल पावन होवेगा, पवित्र होवेगा। तो इसनान कैसा करना है इस महीने विच, महाराज कहिंदे ने माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इसनान। प्रथम ते साधुआ दी संगत कर, उन्हां दी संगत विच बैठ। संग दा विलाप है, एक जुड़ी हुई आत्मा कोल बैठते हैं मन जुड़दा है, एक साधना करन वाले कोल बैठिए मन साधना दी तरफ चल पैंदा है, एक रब्बी प्यार दे गीत अलापन वाले कोल बैठिए तो बैठन वाले दी भी रचना चल पैंदी है, और वह भी प्रभु दे गीत गाण लग पैंदी है। तो साहब कहते प्रथम ते इस महीने दे तू साधुआं दी संगत कर, ते फिर साधुआं दी ही धूड़ी दा इस्नान कर, अपने मस्तक ते ला, अपने बदन ते ला। क्यों? साधक पुरुष जिसकी साधना सफल हो गई, साधु हो गया है, वो जिथे चरण रखेगा जमीन पावन होवेगी, धूड़ पवित्र होवेगी, और वो धूड़ अक्सीर बनेगी। ईरान दा सूफी संत शेख सादी कहता है, सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदाता इंतहा। जे तू आद तो लेके अंत तक सारी सच्चाई वेखना चाहना है, ता जो औलिया ने, जो अल्लाह नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे कदमां दी खाक नूं अपने मस्तक ते ला, और इस तरीके नाल तो पावन होवेगा। अगर देखिया जाए तो जितने तीर्थ ने वड्डे वड्डे, वो भी महापुरुषां दे कदमां तो ही पैदा हुए ने। उन्होंने कदम रखे किसे न किसे रूप च, जन्म दे रूप च, जीवन दे रूप च, या ज्योति ज्योत समान दे रूप च, जिथे भी उन्होंने कदम किसे भी रूप च टिके ने, तीर्थां दा जन्म होया है, तो तीर्थ ते कदमां दे विचों पैदा होंदे ने, तीर्थ ते चरण धूड़ दे विचों ही पैदा होंदे ने। ते जिसनू चरण धूड़ी नसीब हो गई, उसनू ते मानो सारे तीर्थ नसीब हो गए। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इसना। चरण धूड़ दी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बड़ी महिमा दसते ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा पावन वाक, नानक बगोयद जन तुरा तेरे चा करा पाखाक। ए खुदा, ए परिपूर्ण परमात्मा, सतगुरु दा वाक
जो तेरे चाकर ने, जो तेरी सेवा दे जुटे हुए ने, जो तेरे नाल जुड़े हुए ने, उना दे कदमा दी खाक मैनू बना, ताकि उना दे कदम छूंदे हां मैं पावन होवां। इस वास्ते आदि काल तो ऐसे पुरुष जिन्हां दा सिर परमात्मा नाल जुड़िया होया है, उना दे पैर पावन समझ के लोकी अपने घरां दे, अपने अस्थानां दे चरण पवांदे रहे ने। चरण पवाण तो मतलब इन्ना ही है कि इन्हां दा मस्तक ते परमात्मा नाल जुड़े होया है, ते चरणां दे राही साडा घर पावन होवेगा, साडे घर दी खाक पावन होवेगी। ए आद काल तो ए ख्याल बनिया रहा है। और साहब ऐसा भी कहंदे ने, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा। ऐसे पुरुषां दे जिहड़े कदम ने उते मानो करोड़ां गंगा दा इशनान है, इतने पावन ने। क्यों? ये चलदे फिरदे तीर्थ ने, इन्हां दे कदमां दे चों तीर्थ जन्म लैंदे ने। भगत कबीर जी महाराज दा बड़ा सुंदर वाक, कहत कबीर हों भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। तीर्थ बड़ा है कि हरी दा दास बड़ा है। दरअसल कबीर ये कह रहे ने, हरी दा दास बड़ा है क्योंकि उसके कदमां दे चों, उसके चरणां दी खाक दे चों तीर्थां दा जन्म हुंदा है, अनंत तीर्थ पैदा हुंदे ने। तो साहब कहंदे ने, इस महीने दे तू पावन हो सकदा है, पवित्र हो सकदा है, प्रथम ते साधुआं दी संगत कर, ते फिर उन्हां दे चरणां दी खाक नूं अपने मस्तक ते ला। भाई साहब भाई नंद लाल दा एक कीमती शेर आप कहंदे ने, दिले गोया हमी बस आरजू कर। ऐ गुरु, एक आरजू रह गई है मेरे दिल दे, एक तमन्ना, एक इच्छा, केड़ी? शबद कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू कर। ऐ मेरे पातशाह, ये जो संगत तेरे दर तक पहुंचती है, इन्हां दे कदमां दी खाक मैनू कर दे, ताकि इन्हां दे कदम छूंदे आ मैं भी पावन होवां, मैं भी पवित्र होवां। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, अंतर जामी पुरख बिधाते, सरधा मन की पूरे, नानक दास है सुख मांगे, मुख कर संतन की लूरे। मेरी श्रद्धा पूर्ण करो हे परिपूर्ण परमात्मा, संत जना दे चरणा दी खाक बना दो। तो साहिब कहंदे ने, तो पुनीत हो सकदा है माघ दे महीने च पानी दे इशनान नाल नहीं, साधुआं दी संगत नाल और उना दे चरणा दी खाक नू मस्तक ते लगान नाल। पानी नाल तेरा तन पावन होवेगा, पवित्र होवेगा, ते तन दी पवित्रता तन दे स्वास्थ लई लाजमी है, तन दी तंदुरुस्ती लई लाजमी है। माघ मजन संग साधुआ तूड़ी करे स्नान, हर का नाम ध्याए सुन सब नानो कर दान। उना दी संगत दे की कर, हरी दे नाम नू सुन अपने कना नाल, उदी सिफतो सलाह, नाम दी महिमा, नाम दा जपन किवें करिए, ये सारियां विचारां कीर्तन राही कथा राही तू उना पासो सुन, ते सुनन तो बाद सबना नो कर दान। जो तू सुने है, जो तू जाने है, जो तेनू पता चले है जपदे आया सुनदे आया, ये सारियां नू दान भी कर, ये गल सारियां नू दस। जो तेनू पता चल गया इनू दस भी सही, दूजे भी उस मार्ग ते चलन। इस वास्ते गुरमत उपदेश देंदी है, आप जपे अवरा नाम जपावे, खुद भी जप दूजियां नू भी जपण दी प्रेरणा दे। इस तरीके नाल की होवेगा, जन्म करम मल उतरे मन ते जाए गुमान। मन दे उते अनेकां जन्म दे जो कीते ने करम, उना कर्मां दे संस्कार रूपी जो मैल जमी हुई है, साधु दी संगत च बैठ के प्रभु दा नाम सुन के और प्रभु दे गीत गा के उना दे चरणां दी खाक नू मस्तक ते ला के, इज संस्कारां दी मैल कीते हुए कर्मा करके मन दे ते जमी हुई है, सारी भी सारी लै जाएगी और गुमान मिट जाएगा, अहंकार विलीन हो जाएगा। काम क्रोध नाम मोहिए बिन से लोभ सुहान। फिर
ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁਨਰੁਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਅਪੂਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਹਿਮ ਹੋਈਏ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਤੜਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਬਿਨ ਸੇ ਲੋਭ ਸੁਆ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਭ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ, ਇੱਕ ਦੁਆਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੁਆਰ ਤੇ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਮਾਨ ਜਿਉ ਦੌਲਤ ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭੀ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਨ ਨਾਲ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂ ਕੂ ਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਧਾਵੇ ਦੇ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਬਖ ਅਬਖ ਸਭ ਕਾਇਆ। ਲੋਭੀ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ, ਔਰ ਬਖ ਅਬਖ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਂ। ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਮਾਨ। ਐਸਾ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਸਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਾਨ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਮਾਘ ਸੁਚੇਸੇ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਹਿਲੋਰਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਘ ਪੁਨੀਤ ਭਈ

पुण्यदान पूजा परमेश्वर जुग जुग को जाता नामिक माग महारस हर जप अठसठ तीरथ नाता। तुखारी राग दे बारह माह दे राही माग दे महीने दा धन गुरु नानक देव जी महाराज दा उपदेश संदेश। माग पुनीत भई तीरथ अंतर जाने माग दा महीना साडे लई अत्यंत पुनीत साबित होया। किसा किसे तीरथ ते इनान कीता किसे विशेष तीरथ ते जाना नसीब होया साहिब के नहां तीरथ अंतर जाने अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई और उत्थे इनान कीता। ए अंतरीव तीरथ की है इसका गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे बड़ा जिक्र है। भगत बैणी जी कहंदे ने ईड़ा पिंगला सुखमना तीन बसे इक ठाए बैणी ते संगम प्रयाग मन मज्जन करे तिथाए। ईड़ा सज्जी सुर पिंगला खब्बी सुर नासका दी ए दो नाड़ियां दो सुराखा। तीसरी सुखमना जो सिर दे उपरों आउंदी है और इना तिना दा मस्तक दे त्रिकटू जिसनु कहंदे ने तिना दा ए संगम है। आप कहंदे मस्तक दे ध्यान जोड़ के प्रभु दा चिंतन कीता है प्रभु दे नाम दा अलाप कीता है जाप कीता है मन ऐसा लीन होया है मानो घर बैठे ही त्रिवेणी दा इशनान हो गया है प्रयागराज दा इशनान हो गया। इसी तरीके नाल अंतरीव तीरथ दा जपजी साहब दी एक पंक्ति दे राहीं गुरु नानक देव जी महाराज इन जिक्र करदे ने गावीए सुनिए मन रखिए भाव और फिर दूसरी पंक्ति सुनिए मनिए मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मल नाओ। ए अंतरीव तीरथ है परमात्मा दे नाम नु सुनना मनना सुनिए मनिए मन कीता भाव ते मन दे भावनावां नु उजागर करना श्रद्धा नु उजागर करना और श्रद्धा विच लीन होके सुनना मनना ते फिर गायन करना बस यही अंतरीव तीरथ है। इसते ही मन पावन हो जांदा है जन्मां जन्मांतरां दे पापां दी मैल इस तीरथ ते इशनान करके धुल जांदी है। तो साहिब इत्थे फरमान पे कर देने माग पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया माग दा महीना साडे लई पुनीत हो गया पावन हो गया क्योंकि अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई। जद मन अंतर है तो फिर तीरथ भी अंतर ही चाहिदा है। कबीर ने उसका जिक्र इंज कीता है गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट तहां कबीरे मठ किया खोजत मुनि जन बाट। गंग जमन के अंतरे जो परमात्मा दा नाम मैं गायन कर रहा ए गंगा है जो इसनु मैं सुन रहा इस विच ध्यान जोड़ रहा ए जमना है और इस संगम दे उते एक घाट है सहज दा और इत्थे एक होर घाट है सुन दा अफुर अवस्था दा। इस बीच में इशनान कर रहे हैं गंग जमन के अंतरे सहज सुन के घाट ताहां कबीरे मठ किया खोजत मुनिजन बाट। आज काल तो मुनिजन ऋषि लोग संत जन इसी तीरथ नु लभदे फिरदे ने। कबीर कहंदे ने मैं इस तीरथ तक पहुंच गया मैं इस तीरथ ते इशनान करके पावन हो गया। तो साहिब कहंदे ने माग दा महीना पुनीत हो गया अंतरीव तीरथ दी समझ पै गई है और अंतरीव तीरथ दे इशनान ने जन्मां जन्मांतरां दे पापां दी मैल नु धो दिता है। साजन सहज मिले गुण कै अंक समानिया जैसे
अंतरेव तीरथ ते स्नान कीता, पावन होए सहज अवस्था अंदरों उत्पन्न हुई। सहज दा मतलब है स्वयं तो जन्मया, जो अपने आप तो पैदा होया। इस तरह सहज अवस्था दी प्राप्ति हो गई, इदे चों साजन पैदा होए, परिपूर्ण परमात्मा प्रगट होए और उसने कंठ ला लिया।

महान सागर हे अत्यंत सुंदर प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बंके तुद भावा सरनावा जे मैं तेनू पा जावा यही तीरथ दा इशनान है यही सरोवर दा इशनान है जे तेनू पावा ही ना तो फिर इशनान किए तीरथ नावा जे तिस भावा बिन भाणे कह ना करी यही तीरथ दा इशनान है जे तेनू पा जाइए ते उसनू भा जाइए तो समझ लो प्रवान हो गए सारी मैल कटी गई। फिर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक होर सुंदर वाक आप कहते ने तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दसाहरा और नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ धरनी धरा। साहब फरमान कर दें जरूर तू तीर्थां ते इशनान करन ले जा पर तीर्थ केड़ा है तीर्थ नामन जाओ तीर्थ नाम है परमात्मा दा नाम ही ते तीर्थ है और ए तीर्थ हर थां ते है हर वक्त मुयस्सर है बस सिर्फ तेरी रचना चलनी चाहिए वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु ऐसा जाप चलना चाहिए रचना बोले ते कन सुन तीर्थ दा इशनान चल पे तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु दा जो शब्द है उस शब्द दी जो विचार है उनु जिड़ा विचारना है सोचना है अपने सोच मंडल दे जो लेना है बस यही तीर्थ दा इशनान है। तो साहिब इत्थे फरमान करदे ने हे परिपूर्ण परमात्मा हे गुणा नाल ओत प्रोत समाये हुए गुणा दे हे सुंदर स्वरूप जे मैं तेनू पा जावा ताई जो है तीरथ दा इशनान है प्रीतम गुण अंके सुन प्रभ बनके तुद भावा सरनावा गंग जमनते बैनी संगम सात समुंद समावा। जे किधरे तेनू मैं पा जावा ते ए गंगा जमना ते त्रिबैनी दे संगम दा इशनान हो गया मानो सत्ता समुंदरां दा मैं इशनान कर लिया सारी पवित्रता मेनू जो है प्राप्त हो गई। जे किधरे मैं तेनू पा जावा ते भाण दा तरीका इको ही सतगुरु ने दसिया है तीरथ अंतर जाने अंतरी तीरथ दा इशनान बड़ा जो है लाजमी है। विवेक बुद्धि वाले अमृत वेले उठ के बस इसे ही अंतरी तीरथ ते रोज इशनान करदे ने और जन्मा जन्मांतरां दे संस्कारां दी मैल नू धोंदे रहंदे ने धोंदे रहंदे ने एक दिन स्वच्छ पावन ते परमात्मा दी मूर्ति हो जांदे ने। वास्तविक ऐसा पुरुष जिथे भी बैठा है उसके बैठण दे नाल ही तीरथ जन्म लैंदे ने। भगत पीपा जी दा एक बड़ा सुंदर वाक कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नहीं बेदा कायो पूजो पाती। आप कहते ने काया ही मंदिर बन गई है काया ही तीर्थ बन गई है और काया देचो ही मैं नवनिद नाम दी प्राप्ति कर लिए काया बहुखंड खोजते नवनिद पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई। ये महान सौगात इस काया दे अंदरों जो है मैं प्राप्त कर ली उस अंतरीव तीर्थ नू जान के इतनी वड्डी बरकत प्राप्त हो गई। भाई साहब भाई गुरदास जी दी एक बड़ी कीमती पौड़ी है आपदा फरमान चरणों दुख होए सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई। ऐसा इतिहास है कि गंगा ए ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है शंकर दे मस्तक दा जल है विष्णु दे चरणा दा जल है। अपने करमंडल चो कढ़ के ए जल विष्णु दे चरणा ते डोलिया ब्रह्मे ने फिर ए शंकर ने अपने मस्तक दे सहारिया ते इस तरह ए संसार विच आई। चरणों दुख हो सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते जो 999 नदियां 12 मास दरिया वगण वाले ने
भाई साहब कहन गंगा।

प्रकाश गौर मत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाऊ हर जन के बड़ भाग वडेरे जन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिला त्रिपदास है मल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जैन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गूजरी महला पंजवा काहे रे मान चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जन तो पाए ता कर जिका गय कर धरिया

खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परम पुर करता जी, तुद जीवड़ वरना कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू नह चल करता सोई। तुद आपे पावे सोई वरत जी, तू आपे करें सोई। तुद आपे सरेष सब उपाई जी, तुद आपे सरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जान होई। आसा महला चौथा। तू कर दस जार मैडा साई, जो तो पावे सोई थेसी, जो तू दे सोई हों पाई राव। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिस नौ कृपा करहे तन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

जेते बदन श्रेष्ठ सवतार है, आप अपनी बूझो चार है, तुम सब ही तेरा तनरालम, जानत वेद भेद अरयालम, निरंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिय

कछ भेद न जानत। महादेव का कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज सिद्ध जकीनी, उत पुज खान बहोर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार या सिख संगरो। दोष जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस्त हो तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुख तवै मरे। पुरख जबन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला, दोष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट धन जहे निहरि हो, ताके ताप तनक मोहरि हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दोष्ट शास्व सक न कोई। एक बार जन तुम्हें संवारा, काल फास्ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दोष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप

प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बनाइया शब्दों तां गावो हरि के राग मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना।

क्या नहीं करते रहे। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुरबान कीता गुरु विटह, जिस दियां ही बड़ियाइया कह नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द कर सभागै, कर सभागै शब्द वाजे कलाजित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजी। आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजी अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर

प्रभ की शरण सगल पहला थे दुख बिन से सुख पाया। दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सदगुरु ध्याया।

प्रभ जियो तू मेरो साहिब दाता कर कृपा प्रभ दीन दयाला गुण गावो रंग राता रहाउ सतगुर नाम निधान दृढ़ाया चिंता सकल बिनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन बसया अविनाशी

बलहारय जन पूरन पैज रखाई। कर सेवा सेवक प्रभ अपने जन मन की अच्छ पुजाई। नानक दास तां कै बलहारय जिन पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोहिला रागुर जी की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीर्तन किए करते पवन विचार कित कर गाव सोहिला सिवर सृजनहार। उत्तम गाव मृगर भव का सोहिला हूँ और यत सोहिला सदा सो सोहिला। नित नित जीवन संभाली आनंद देखे का देवनहार। तेरे दाना चिंत ना पवै ते सदा तिल कमल समार। समसार लिखिया मिल कर पाव तेल। देह सजना शीशड़ियाँ आ जा होवै सब समय लघु कर कर रेहो पाहुन चा सड़े नत पवन। सदन हारा सिमरिय नानक से देवन। राजा सा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक। बाबा जयकर करते कीरत होए। सो कर राख बढ़ाई तोय राव विश्व जसें कड़ियाँ तहरा। छेती बारी महोवा सूरज को रतनेक। नानक करते के वेस राग तन आसरी महला पहला। गगन मै थाल रव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जनक मोती। रूप मलयान लो पवन चबरो करे। सगल बनराई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द बायंत तेरी राहु। सहस पव नैन नन नैन है तोहे कहो। सहस मूर्त नना एक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बैनु। सहस पव गंध विचलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोई। तिलदे चानन सब मैं चानन होई। गुरसाखी जोत प्रगट होई। जो तिस भावे ऐसो आरती होई। हार चरण कवल मकरंद लोभित मनो मन दिन मोहिया ही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिन का होई। जाते तेरे नाहे वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर भो भरिया। मल साधु खंडल खंडाही। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मुंडाही। कर साधु अंजली पुन वड्डाही। कर डंडौत पुन वड्डाही। रहाओ साकत हर साधन जानिया। तन अंतर हो मैं कंडाही। ज्यो ज्यो चल है चुभ दुख पावे। जमकाल सहे सिर डंडाही। हर जन हर हर नाम सुमाने। दुख जन्म मरण पव खंडाही। अविनाशी पुरख पाय परमेश्वर। बसो बखंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। हर राख राख बड़ बड़ाही। जन नानक नाम हर टेक है। हर नाम ही सुख मंडाही। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो

भाई और पिता पुत्र माता किन्ने प्राणा नूं प्यारे गुरसिख शहीद कराए, पर असीं अकिरतगण बन गए, सारे परपकारां नूं भुल के ते सिक्खी छड गए। हुण हिंदुस्तान च लै लो, जिन्हां वास्ते एडा बलिदान दिता कभी एहसास ही नहीं किया कि जां उन्हां दा कोई दिन वारे मनाया जाए, पर वह बंदे जिन्हां नूं कोई कदर करदे अकिरतगण बन गए। इस वास्ते हुण कई गुरु प्यारे जिहड़ा सलोक है ना उस सिद्धांत नूं समझदे नहीं। जदों महाराज सच्चे पातशाह दा पाठ संपूर्ण हुंदा ते रमाला भेट करन वेले सलोक पढ़दे, पर जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिआ ये तो अरदास है कि साढ़े पढ़ते वह कज रहा है, असं ये थानू मारा सुहांडने असं थोड़े पढ़ते कजिए तुम साढ़े कजियो बारी का बट्टा लाने, तो जोड़ा उदारथ भाव है वह असं समझते नहीं। रुमाल पाने वेले स्लोक पढ़ते, पर गुरमन तो यह विचार जो विचारीए तो इस तरह जोड़ा स्लोक है वह भाव की है। महला पंजवा टैडै सिमरन हब किश लद्धम बिखमना डिठम कोई, यह निरंकार आप जी का सिमरन कीतिया हब किश हब मैंने सब कुछ लद्धम मैंने लभ पैंदा प्राप्त हो जाता और कोई कम बिखम फिर कठिन नहीं, कोई औखा नज़र नहीं आता, तेरी मेहर हो जाती है। जिस पत रखे सच्चा साहिब नानक मिट न सके कोई, पातशाह कहंदे हे सच्चे साहिब जिन्हां दी इज्जत नूं आप जी रखदे हो पत मैंने इज्जत, उन्हां दी इज्जत नूं कोई भी मिटा नहीं सकदा। पौड़ी होवे सुख खाना दई त्याई आया है, दई मैंने जिहड़ा प्रेत निरंकार उन्हूं त्याउणे ना खाना बहुत प्रकार का सुख हुंदा, ददा ईड़ी नूं बिहारी ते ईड़ी नूं सियारी दई त्याई है, इस वास्ते बड़ा भारी सुख हुंदा। वन्या रोगा कान हर गुण गाया है, परमात्मा दे गुण गाउण रोगां दी कान जिहड़े अज्ञान है वंझे दूर हो जांदे, अज्ञानता आदिक रोग सारे निवृत्त हो जांदे हन। अंदर वरतै ठाढ प्रभ चित आया, जे निरंकार चेते आवे सिमरन च सुरती जुड़ जाए मन अंदर ठंड वरत जांदी, उत्थे घबराहट आउंदी पूर्ण होवै आस नाए नाए मन वसाया। संत नूं बाबा जी वाला महाराज संग विराजमान सी ते बीबी दया कौर उसने बड़े अपमानजनक शब्द बोले, बड़े असभ शब्द पदे, ते श्रीमान बाबा त्रिलोक सिंह साहब ख्वाजा फटकाले महाराज कहन लगे महाराज की चंडालनी संग जी नूं रख्या होया ते संग च बैठे उठे देखदी नहीं, जो मर्जी पकड़वाद करती है। ते महाराज बड़े शांत, ते बाबा जी का गुट फड़ कहन लगे कि तुसीं क्यों घबराउंदे, ये तो मेरी पिछले जन्म की माँ है, मैंने जो मर्जी कही है, मैं इन्नी गल नहीं शांत करता क्योंकि उन्होंने अंदर इन्नी ठंड वरत जाती है घबराहट आती नहीं। पूर्ण होवे आस नाए मन वसाया, उन्होंने मन दी परमेश्वर ना मन वसाउणा सारिया आसां पूरियां हो जांदियां। अंतन बाबा उत्तर सिंह महाराज ने इस तरह इसने बड़ा अपमानजनक शब्द कहे, वह मुस्कुराते रहे कहते महाराज तुम सानू भी आग्ञा नहीं दी कहने भैड़े शब्द, कहते ना भाई वो तो अग लैन आया सी साढ़े को आ गया है ना, उन्होंने इन्नी ठंड बरत जाती है नाम की बरकत, पूर्ण हो गया आस नाए मन वसाया, मन परमात्मा नाम वसाउणा सारिया आसा पूरिया हो जाए, कोई ना लगे बेगन।

सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी हजूर साहब संग जी सिमर फतेह प्रवान करना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी परम पवित्र याद विच बैठ के समय ते श्वासां दा आप जी लाह ले रहे गुरमुखां प्यारियां तों आप जी कथा विचार गुरबाणी इतिहास श्रवण कर रहे थे। सतगुरों की शरण विच आउण दे नाल संसार का भय मुक जाता। तीन तरीकों के नाल संबंध बनते ने सतगुरु के नाल। सेवा द्वारा, सत्संग द्वारा, सिमरन के द्वारा। धर्म मनुख का एक भी हो

इस दुनिया उत्ते कूड़ बठंड हनेर दिसे कद इस दुनिया उत्ते कूड़ बठंड हनेर दिसे अंबरी उत्ते छाया तुम गुबार अंधेर दिसे अंबरी उत्ते छाया तुम गुबार अंधेर दिसे सूरज दा बण रूप आकाश नकार ले आउंदे नो संत रूप भगवान जग

मालिक भागो दिया लोकी रिश्ता कर देने बदला लो तेरी खान चहे कई भूखे मर देने बदला लो तेरी खान चहे कई भूखे मर देने।

जगत उतारने आंदे ने संत रूप भगवान जगत उतारने आंदे ने संत रूप भगवान जगत

नाम सुन संपती बादशाही कलजी का नाम सुन संपती बादशाही कलजी का नाम सुन संपती बादशाही अज ओ शेर फड़ तिंदरे

0: तेरी अमरे सिखी नू मेरे सतगुरु दिया तेरी अमर सिखी नू मेरे सतगुरु जी अपने सिर दे नाल निभा देंगे धन दौलत जवानी दे दाती अपनी लेखे तक दे सब कुछ ला देंगे लेखे तक दे सब कुछ लगा देंगे असी हिंदू रही सिख नहीं पुत मेरा इस बुढ़ी माता दा कुछ तो तरस करी पुत शेरा इस बुढ़ी माता दा कुछ तो तरस करी पुत शेरा मैं गल समझाई रुक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबार आई रुक जाओ जला देवे चिट्ठी ला दरबार आई मैनू करो मुक्त छोटी मर के मैं मुक्त हो जावा मैनू करो मुक्त छोटी मर के मैं मुक्त हो जावा सिंह दल की तरदा हा मर के भी मैं अमर कहावा सिंह दल की तरदा हा मर के मैं भी अमर कहावा मुक्ति पाई तो कत्ल चला दे वे मैं झूठ बोल दी माई तो कत्ल चला दे वे मैं झूठ बोल दी माई हो रुक जाओ जला दे वे चिट्ठी ला दरबार आई करो कत्ल जला दे वे मैं झूठ बोल दी माई हो रुक जाओ जला दे वे चिट्ठी ला दरबार आई करो कत्ल जला दे वे मैं झूठ बोल दी माई
1: शमा भी जलती रही परवाना जल जाने के बाद सिखी की शमा है परवानिया ने इससे कई बार अपना आपा फना किया करते रहेंगे इन्हां ही विचारां नाल समाप्ति उन्हां महान शहीदां नूं श्रद्धांजलि दे फुल भेट कर रहे सां महापुरखां दे चरणां विच हाजरी लवा रहे सां बहुत बहुत धन्यवाद समुची साध संगत का ढाडी अथा एयरपोर्ट फोर्ड विखे लगातार सेवा निभा रहा है गाहे वगाहे समा कढ के प्रबंधकां दे हुक्म उत्ते फुल चढ़ा लिया होया इथे भी कैंट संगतां दे जोड़े झाड़े हैं उम्मीद है टुटी फुटी सेवा प्रवान करोगे सारी संगत का धन्यवाद बाबा जी तो अगला प्रोग्राम शर्म करो ढाडी अथे दी रिकॉर्ड हुई कैसटा अते सीडी साडे कोल मौजूद हैं किसी भी नूं लोड़ होवे स्टेज के नाल साडे नाल संपर्क करके तुसी प्राप्त कर सकते हो बुलाओ प्यार सा फते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा
2: वाहिगुरु जी की फतेह महाराज जी के दरबार अंदर जुड़ बैठे परम सत्कार जो गुरु सत्संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारिया ही सिख संगत
3: केरबू की रंगीली धरती के वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375
4: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी सिंह सभा @gmail.com एक बार फिर नोट करो जी सिंह सभा @gmail.com
5: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे नु इस संसार से पीस कलयुग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया इस संसार विच धन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ए कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण सूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ए उपदेश कीता ए जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं सानू सारियां नू बनान वाला एक परमेश्वर है आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतियां अपछरा खुशी दे गीत गाए आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करी।

0: केरबोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

जन्म करम मल उतरे मन ते जाए गुमान। मन दे उते अनेका जन्म दे जो कीते ने करम उना कर्मा दे संस्कार रूपी जो मैल जमी हुई है। साधु दी संगत दिच बैठ के प्रभु दा नाम सुन के और प्रभु दे गीत गा के उना दे चरना दी खाक नु मस्तक ते ला के इज संस्कारां दी मैल कीते हुए कर्मा करके मन दे ते जमी हुई है सारी दी सारी लै जाएगी और गुमान मिट जाएगा, अहंकार विलीन हो जाएगा। काम क्रोध नाम मोही गए बिन से लोभ सुहान। फिर ए वासना ए क्रोध, क्योंकि जिथे जिथे भी वासना दी कामना दी अपूर्ति हो जाती है उत्थे क्रोध पैदा हो जाता है। कामना दी पूर्ति हो जाए तो वक्ती तौर ते आरजी तौर ते मनुख संतुष्ट हो जाता है, कामना फिर उजागर होती है, फिर रिपीट होती है, फिर पुनरुक्त होती है और इस तरह फिर वो पूर्ण होना चाहती है। तो जिथे जिथे भी कामना अपूर्ण रह जाती है, काम की अपूर्ति हो जाती है, क्रोध का जन्म हो जाता है। तो साहब कहिंदे ने इस तरह संगत करदे हां सीमा तो वधिया होया काम जो क्रोध नू जन्म देंदा है ये नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और फिर नह मोलिए अंदर मोह भी मिट जाएगा और बहुती मोह दी जड़ी खिच ते तड़प है ये भी नाश हो जाएगी ते बिन से लोभ सुहा। ये जो लोभ कुत्ता है ये भी मर जाएगा। इसनू कुत्ता क्यों आखे है? दरअसल कुत्ते दी फितरत द्वारे द्वारे एक द्वार ते दूजे द्वार ते तीजे द्वार ते द्वारे द्वार समान ज्यों दौलत नह सुध राम भजन की। इस तरह लोभी दी भटकना होंदी है, कदी एक पासे कदी दूजे पासे, कदी एक दी खुशामद कदी दूजे दी। इस तरह दर दर दी भटकन लोभ करके जो है बनी रहती है। इस वास्ते इसनू स्वान नाल कुत्ते नाल तस्वीर दिती है। साहब साफ भी कहंदे ने एक पंक्ति विच, ज्यों कु कर हर काया धावे गए दिस जाए लोभी जंत न जाने पख अबख सब खाए। लोभी ते ऐसा है जैसे हल्का होया कुत्ता और बख अबख सब जो है खा जाएगा। सच्चे मार्ग चल दया उस्तत करे जहां। जब कोई परमात्मा दे मार्ग ते चल पैंदा ते उसके अंदर दैवी गुण उत्पन्न होने शुरू हो जाते ने तो जगत दे उसकी उस्तति होने लग पैंदी है, उसकी महिमा जगत बखान करन लग पैंदा है, क्योंकि परमात्मा दे दैवी गुण उसके अंदरों प्रगट होने शुरू हो जाते ने। अठखट तीर्थ सगल पुन जी दया परमा। ऐसा जो पुरुष जिसने संगत दे बैठ के प्रभु का जाप किया है मानो अठाठ तीर्थां दा इशनान ते तीर्थां ते जाके जीवां दे उते दया करके जो दान ते पुन करना है ये सारे दा सारा जो फल है वो प्राप्त कर लेंदा है। पुन करके दान करके दया करके और तीर्थां ते इशनान करके जो भी जो है प्रताप पुन प्राप्त होंदा है साहिब कहिंदे ने साधु दी संगत दे सब कुछ प्राप्त होंदा हो जांदा है। जिसनू देवे दया कर सोई पुरख सुजान, पर जिसनू ए सौगात दया करके परिपूर्ण परमात्मा आप देंदा है ओही सुजान है, ओही महान है, ओही सियाण है। जिन्हा मिलिया प्रभ आपना नानक तिन कुर्बान। माघ दे महीने दे जिन्हा नू ऐसा प्यारा प्रीतम मिल पिया है साहिब कहिंदे ने मैं उन्हां तो सदके जाना कुर्बान जाना। माघ सुचे से कांडिये जिन पूरा गुर मेहरवान। माघ दे महीने दे ओही सुचे ने मानो उन्हां ने ही सही इशनान कर लिया जिन्हां दे पूरे गुरुदेव की पूरी कृपा हो गई है, मेहरबानी हो गई है और उन्हां नू आत्मक आनंद हिलोरा नसीब हो गया। माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया

भारत दे जो चल रहा है साल बिकनी सम्मत उसका ए आखरी महीना फगन फलगुण फलगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए गुणा दा फल है सज्जन दा मिला फलगुण फगन फलगुण फलगुण दे महीने दा उपदेश माज रागरी महान रचना बारह माह दी बाणी राही गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान पे करदे ने फगन दे महीने दे सज्जन हिरदे दे आण प्रगट होए ने आनंद बन गया आनंद दी वर्षा हो गई ए मिलाप किवें होया ए सज्जन किवें प्रगट होए संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिला राम नू मिलाण दे जिहड़े मददगार ने संत लोग सहायक ने बस उन्होंने बख्शिश की उन्होंने रहमत की उन्होंने मिला दिता क्योंकि उन्होंने संगत विच राम याद आ गया उन्होंने कोल बैठ के ईश्वर याद आ गया इस वास्ते भगत कबीर ते साफ कहने कबीर सेवा को दोनों भले एक संत एक राम राम जो दाता मुकुट का संत जपावे नाम ये ठीक है कि मुक्ति परमात्मा दे हाथ च है और किसी ने भी नहीं देनी दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस दे पर दाते दे हथां तक पहुंच सकी है दाते दी दात प्राप्त कर सकी है उसकी सिफत तो सलाह कर सकी है उसनु जान सकी है संत मददगार ने प्रथम मनुख दी कोशिश होवे सत्संग तक पहुंचना गुरु तक पहुंचना फिर गुरु दा एक कम है अभ्यासी नो साधक नो राम तक पहुंचा देना परमात्मा तक पहुंचा देना तो संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा ना ही जाए हृदय दी सेजा हुण सुखा नाल भर गई है सुहावनी हो गई हुण दुखां लई कोई थां नहीं रही दरअसल मनुख तन करके ते इतना पीड़ित नहीं है सारी दुनिया दे जितना मन करके पीड़ित है तन दे तल ते इतने रोग नहीं जितने मानसिक रोग ने ये तन करके इतना दुखी नहीं है जितना मन करके है तो हृदय दी सेजा दते साहिब कहंदे ने सुख ही सुख प्रगट हो गए इस वास्ते सेजा सुहावनी हो गई है हुण दुखां लई कोई थां नहीं रही कोई ठिकाणा नहीं रहा नस वंजो किल वेखो करता घर आया ए पाप ए दुखो नस जाओ भज जाओ हुण हिरदे दी सेजा ते आनंद दे सोमे आनंद दे दाते आनंद दे सागर परिपूर्ण परमात्मा आण विराजे ने उदे गुणा दा वास्ता हो गया हुण तुसी रुखसत होवो हुण थोड़े लई कोई थां नहीं हुण थोड़े लई कोई ठिकाणा नहीं इच्छ पुनी वड भागणी वर पाया हर राय साहिब इत्थे फरमान करदे ने वड्डियां भागां वाली इस जीव रूपी कामण दियां सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई दरअसल इच्छा दा पूर्ण होना इच्छावां दा पूर्ण होना नहीं है परमात्मा दा मिलना ही सारियां इच्छावां दी पूर्णती है सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा जैसे उस अगम दी प्राप्ति होंदी परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है मानो सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई सारे सुख प्राप्त हो गए तो सतगुरु इत्थे पै फरमान करदे ने सारियां इच्छावां दी पूर्ति हो गई वड्डियां भागां वाली ए जीव इस्त्री इसनु वर दी प्राप्ति हो गई हरि राय दी प्राप्ति हो गई मिल सैया मंगल गावई गीत गोविंद अलाला ए जीव रूपी इस्त्री हुण साध रूपी सहेलियां दे बैठ के प्रभु दे मंगल गा रही है ईश्वर दी धुन अलाप रही है इस तरह हर वक्त ईश्वरमयी माहौल बनया होया है ईश्वरमयी वातावरण बनया होया है
हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे ना लाए। संगत दिस गीत गांदिया गांदिया एक अनुभव प्राप्त होया कि हरि जैसा होर कोई भी नहीं। चाहे कोई गुणवान है, समर्थ है, दानी है, ज्ञानी है, साधक है, सिद्ध है, पर कोई भी हरि जैसा नहीं, क्योंकि हरि तो ही सारे सिद्ध पैदा होंदे ने, साधु पैदा होंदे ने, संत पैदा होंदे ने, तीर्थ पैदा होंदे ने, सब कुछ दा दाता ते ईश्वर ही है। इस वास्ते ईश्वर जैसा होर कोई भी नहीं। हालत पलत सवारियन नहीं चल दितियन जा। साहिब ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने लोक सुहेला कर दिता, पर लोक सुहेला कर दिता, तन भी सुखी कर दिता, मन भी सुखी कर दिता। संसार दे तल ते सहूलतां पैदा हो गईयां, और आत्मक तल ते रूहानी आनंदी जो है प्राप्ति हो गई। लोक ते परलोक इस तरीके नाल जो है सवर गए। संसार दे सहूलतां प्राप्त हो जान ते सहूलतां सारियां धन दे आसरे ते खड़ियां ने। उपजीविका लई पूर्ण धन होवे ते मन दे संतोख होवे, लोक सुहेला हो गया ते मन विच प्रभु दा नाम होवे, प्रभु चिंतन होवे, तो परलोक सुहेला हो गया। इस तरह तन भी सुखी हो जाता है, मन भी सुखी हो जाता है। साहिब कहंदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा ने साडा लोक परलोक सुहेला कर दिता है, सफल कर दिता है। संसार सागर ते रखियन बहुड़ ना जन्मे धाए। संसार विच ये जो चक्कर दी तरह बार बार आवना सी जावना सी आवना सी जावना सी, और उस चक्कर दे जो असी पए हुए सी, जम जम मरे मरे फिर जमने हैं, बहुत सजाए पया देश लमने हैं। ई जो इस चक्कर दे भटकना हमेशा दी बनी हुई सी, उस परिपूर्ण परमात्मा ने इस चक्कर विचों कढ दिता है, इस सागर तो पार कर दिता है। मुड़ के जन्मा दी धावना नहीं, जन्मा दी भटकना नहीं, वो चक्कर नहीं। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे गुण ते अनेका ने, पर तेरे गुणा दा उचारण करन लई, कथन करन लई मेरे कुल रसना सिर्फ एको ही है। इस वास्ते पूरे दे पूरे तेरे गुण आंकने बयान करने बहुत औखे ने, बहुत औखे ने। रसना एक है। कहिंदे ने जद रसना गांदिया गांदिया रस नूं उजागर कर बैठदी है, भाव रस नाल भर जांदी है, तो उसके अंदर एक लोभ पैदा होंदा है, होर गावा होर गावा होर गुणा दा उचारण करा। और उत्थे अभ्यासी दे मन विच ए ख्याल भी पैदा हो जाए, काश किधरे करोड़ा जबाना मेरे कोल होंदिया ते प्रभु दे मैं गीत गांदा, किधरे करोड़ा मेरे कोल कन होंदे ते मैं करोड़ा कन्ना नाल उस दी उस्तति सुनदा। कोट करन दीजे प्रभु स्वामी हर जस सुनिए अवनासी राम। तो इस तरह अभ्यासी दे मन विच एक लालसा पैदा होंदी है, हे प्रभु अनंत गुणा दा तू मालिक है, पर तेरे गुणा नू गायन कर सका मेरे कोल केवल एको ही रसना है। एक जबान नाल तेरे अनंत गुणा नू मैं किवें गावा, किवें प्रगट करा। फिर भी साहिब कहंदे ने एक रसना नाल गांदिया गांदिया चित तेरे चरणा च जुड़िया। इस तरीके नाल असी संसार सागर तो पार हो गए, उतर गए। फलगुण नित सा लाइए जिसनू दिल ना तवाए। फलगुण दे महीने दा उपदेश साहिब कर देने, उसकी सिफतो सलाह करो जो दे के रंचक मात्र भी तमा नहीं रखदा, तिल जितनी भी जो है तमा नहीं करदा, उसकी सिफतो सलाह करो, उसते गीत गायन करो, झोलियां हर तरीके नाल भर देवे ते जताण दी कोशिश भी ना करे। ऐसा जिहड़ा दाता है परिपूर्ण परमात्मा, फगण दे महीने विच उसकी सिफतो सलाह करा, तो फिर इस सारे दा सारा महीना सुख शांति चैन ते आनंद नाल बतीत हुंदा है। बारह माह इत्थे समाप्त होया ते बारह माह दा उपसंहार, वास्तविक तत् निचोड़ इस शब्द अखीरले शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस तरह बयान करते ने, जिन जिन नाम दे आया तिनके काज करे। जिस जिसने भी परमात्मा दा नाम आराधन कीता, उस दे ध्यान जोड़िया,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜੇ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਛੱਤਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗੇ ਸੱਚ ਖਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਖਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਸੁੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਨਿਧਿ ਚਰਨ ਹਰ ਭਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਧਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਭਉ ਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਭਉ ਜਲ ਅਤਿ ਵਿਖਮ ਹੈ, ਅਤਿ ਔਖਾ ਹੈ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿੰਨ ਪਾਈਆ ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੇ ਜਰੇ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਨੇ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ, ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੇ ਜਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹਿਲੋਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਚ, ਕੂੜ ਝੂਠ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਦਾ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਾਵਨਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਦੀ ਵਿਪਰੀਤ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਘਿਰਣਾ, ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਅਗਿਆਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਦਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਕਠੋਰਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ, ਐਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਮ ਜਪ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ 12 ਮਾਹ ਦਾ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ 12 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਮਹੂਰਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਓ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਲਗਨ ਸੁਧਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਕਸਰ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਬਹਿੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਨ ਬਹਿੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਭੈੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੇਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਦ ਕਰਮ ਅਸ਼ੁੱਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
تو چاروں پاسے اس نو ایسا دکھائی دیندا ہے وہ اپنی برائی دی آپ ذمہ واری نہیں لیندا، فلانا برا ہے فلانا برا ہے فلانا برا ہے، تے اس دے برے کر کے میں برا ہو گیا، اس دی برائی کر کے میں دکھت ہو گیا۔ تو یہ الزام کئی دفعہ منکھاں تے تھوپیا جاندا ہے، کئی دفعہ گرہ نچھتریاں تے تھوپیا جاندا ہے، مہینیاں تے تھوپیا جاندا ہے، دن تے تھوپیا جاندا ہے، یہ دن نہیں ٹھیک۔ تو صاحب کہنے نہیں، مہا دیوس مورت بھلے جس کو نظر کرے، جنہاں دے تے پرماتما دی نظر ہو گئی تے جو نام جپن لگ پے، سارے مہینے انہاں لئی شوب نیک نے، سارے دن انہاں لئی مہان نے۔ نانک منگے درس دان کرپا کرو ہرے، اے پری پورن پرماتما نانک ایک دان تیتھو منگدا ہے، تو بخشش کر کرپا کر، میری جھولی وچ اپنے درشنا دا دان پا، اپنے درشن دی بکھشا پا۔ بارہ ماہ ماج راگ دا گرو ارجن دیو جی مہاراج اس ارداس اس پرارتھنا نال سماپت کر دینے۔ فلگن

0: तुखारी राग दे अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फलगुण दे महीने दा उपदेश चल रहे इस बारह माह दा आखरी महीना फलगुण गुणा दा फल। गुणा दा फल की है? फलगुण मन रहसी प्रेम सुभारा। मन सरस गया, मौल गया, भिज गया, स्वभावक प्रेम रूपी मन बन गया, प्रेम दी मूर्ति, प्रेम दा स्वरूप, अंदर प्रेम उजागर हो गया, तो गुणा दा फल प्राप्त हो गया, फलगुण दा महीना आनंददायक हो गया। अन दिन रहस भया आप गवाया, जिस दिन दा हंकार मिटाया, दिन रात अंदर रहस पैदा हो रहा है, रहस आश्चर्य का, विस्माद विस्माद आश्चर्यता उदो होंदी है जद अखां वेखन ते पूरा वेख ना सकन, मन सोचे ते पूरा सोच ना सके, हथ प्राप्त करना चाहन ते सारा हथां दे आ ना सके, कन पूरा सुनना चाहन ते पूरा सुन ना सकन, ऐसी हालत विच रहस पैदा होंदा है। कहिंदे ने जैसे जैसे मनुख दा मन विज्ञान तो प्रभावित होया है, रहस खत्म हो गया है, क्योंकि विज्ञान दा दावा असी जान लिया है, इस पदार्थ दी सच्चाई नू जान लिया है। धर्म कहिंदा है तू कितना भी जान लवे, जानकारी अधूरी होवे, मुकम्मल नहीं होवे। पूरन नू जे तू जान भी लवे ता भी वो किसे हिस्से नू जानेगा, एक नुक्ते नू जानेगा, पूरन जानना अति कठिन है, अति कठिन है। इस वास्ते अठे पैर जिथे विज्ञानक ते नास्तिक तर्क दे जीवदा है, उथे भगत रहस्य दे जीवदा है, विस्माद दे जीवदा है, आश्चर्यता दे जीवदा है। वो खिड़े हुए फुलां नू वेख के भी विस्मादी हो जांदा है, जबकि विज्ञानक ने कह देना की है, कुछ खनिज पदार्थ ने, कुछ पानी है, कुछ कैल्शियम है, उसका जिहड़ा जोड़ है वो एक फुल है और की है। पर नहीं, इस सब कुछ दे जोड़ तो बिना भी कुछ फुल है। वो एक कवि नू दिखाई देंदा है, एक संत नू दिखाई देंदा है, भगत नू दिखाई देंदा है, तार्किक नू नहीं दिखाई देंदा, साइंटिस्ट नू नहीं दिखाई देंदा। साइंटिस्ट उपर उपर निगाह रखता है, इहदे च पानी कितना है, कैल्शियम कितना है, लोहा कितना है, जस्त कितना है, इहदे च बाकी दियां धातुआं कितनियां ने। लेकिन संत कुछ होर देखता है, इस जोड़ तो जो कुछ बने है और अगम्मी बने है और इस दे जो अदृष्टता दी झलक है वो देख के संत विस्माद दी दुनिया दे खो जांदा है। तो अन दिन रहस भया आप गवाया, दिन रात विस्माद बने होया है, रहस बने होया है, क्योंकि अपना आप मिट गया है और रहस्यमयी ए अवस्था बन गई है। मन मोह चुकाया जांच भाया कर कृपा घर आ, अरदास कीती जोदड़ी कीती हे परिपूर्ण परमात्मा तू दया कर बख्शिश कर मेरे हृदय दे घर विच आ। ऐसा अरदास जोदड़ी करदिया करदिया मन विचों मोह मिट गया और जो कुछ परमात्मा नू चंगा लगदा है वो सानू चंगा लगन लग पिया, ऐसी जो है अवस्था बन गई। मन मोह चुकाया जांच भाया कर कृपा घर आओ, बहुते वेश करी फिर बाजो मैली लहा न था। पर जीव रूपी स्त्री एक परमात्मा दी प्राप्ति तो बिना, एक उसकी याद तो बिना कितने भी धार्मिक वेश करे, कितने भी धार्मिक श्रृंगार करे, ता भी उनो निज थां दी किथे प्राप्ति, भटकना ते बनी रहंदी है। हार डोर रसपाट पटंबर पिर लोड़ी सिंगारी, पर जे किधरे परमात्मा लोड़ महसूस करे ते हृदय विच परमात्मा दी लोड़ पैदा हो जाए, चाहत पैदा हो जाए, मानो ओ ते सिंगारी गई, मानो उसने गले विच मोतियां दे हार पा लेने, मानो उसने अपना सारे दा सारा बदम सिंगार छड़े है, सजा छड़े है, क्योंकि हृदय विच उसकी लोड़ पैदा हो गई है और परमात्मा नू चंगी लग गई है। नानक मेल लई गुर अपने घरवर पाया नारी, साहिब कहंदे ने हिरदे रूपी घर दे छी इस जीव रूपी स्त्री ने परमात्मा रूपी वर दी प्राप्ति जो है कर ली। इस तरह परिपूर्ण परमात्मा ने गुरु ने बख्शिश की थी, रहमत की थी। अगा तुखारी राग दा ए बारामा दा समाप्ति दा शब्द गुरु नानक देव जी महाराज सारण इंज बयान करते ने, बेदस महारुति थिपती वार भले बेदस बे कहने दोनों दस बेदस बारह बारह महीने ए रुत्ता ए थिप ते वार सारे दे सारे भले ने। ना कोई महीना माड़ा है, ना कोई दिन माड़ा है, ना कोई रुत माड़ी है, ना कोई वार माड़ा, ना कोई थित माड़ी। मनुख दी सोचनी अज्ञानता करके है। साहिब कहंदे ने बेदस महारुति थिती वार भले ए बारह महीने ए तरह तरह दिया रुत्ता ए नित बदल दी थित ए नित बदल दे दिन ते वार साहिब कहंदे ने सारे ही भले ने। घड़ी मूरत पल साचे आए सहज मिले सहज सुभा जदों दे परमात्मा मिले ने उस सच दी प्राप्ति होई है कि सूझ मिल गई है। महीने सारे चंगे ने, घड़ियां सारिया चंगिया ने, रुत्तां सारिया चंगिया ने, दिन सारे ही चंगे ने, चित्तां सारिया चंगिया ने। सच दी प्राप्ति दे नाल ए सच अंदरों उगड़े है, ए असलियत बार प्रगट होई है। प्रभ मिले प्यारे कारज सारे करता सब विद जाने इस तरीके नाल परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई। सारे साडे कारज सवर गए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿੰਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੀ ਮੇਲ ਭਇਆ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। उन्हें अपने गुणा नाल आप ही सिंगारे है ते अपने गुणा करके आप ही प्यार पाया है। घर सेज सुहावी जां फिर रावी गुरुमुख मस्तक भागो साहिब कहंदे ने जदों गुरु नु मुख रख के जीवन बतीत कीता भाग मस्तक ते जा गया और इस तरह हिरदे दी सेजा सुहावनी बन गई ते परमात्मा दी प्राप्ति हो गई। नानक अहनिस रावे प्रीतम हरवर थिर सुहाग सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करदे ने जेड़ा भी दिन रात प्रभु दा नाम जपदा है उस प्रीतम दे गुणा दा रमन करदा है ओदा सुहाग थिर हो जांदा है, ओदा सुख अटल हो जांदा है, उनू नेचल अवस्था दी जो है प्राप्ति हो जांदी है। बारह महीनियां दा ई सारण साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दसते ने बस केवल नाम जपी जाओ हर दिन थोड़े लिए चंगा साबित होवेगा, हर महीना चंगा साबित होवेगा, हर साल चंगा साबित होवेगा, हर थित ते हर वार ए नित नवीं खुशियां नू जो है जन्म देंगे। तू एक कम कर बाकी सारे कम अपने आप होंदे जाणगे और एको कम है एक दी आराधना एक दा जाप एक दा रमन एक दी स्रोत एक दी मनोत एक दी आराधना। सतगुरु रहमत करे इस बारह माह दी बाणी दे विचार द्वारा मन विच एक दा चिंतन जागे ताकि जीवन सारा सुखमय बीत हो।
1: केरबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नूं होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानूं सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नूं पता ही है, जे नहीं तां ओह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha and Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

हम अवगुण परि एक गुण नाही, अमृत साढ़ बिख बिख खाही। माया मोह परम पै फूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवी है, अहनस सहज सुपाय। दर्शन परसे हैं गुरु के, जन्म मरण

अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच पातशाह माल जन्म जन्म भी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर चहां जिस पास बैठिया सो ही है सबना दा विसा सतनाम वाहिगुरू साहिब जीओ श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगै आए जम्मन

जमण मरना मिट गया, काल का किछ ना बसाय। हर सेती मन रब रहया, सचे रहया समाए।

बिन शब्द शुद्ध न हो वही जे अनेक करे श्रृंगार फिर की सार न जानई दूजे पाए प्यार।

हर हर अपनी दया कर, हर बोली बाणी, हर नाम त्याई हर उचरा, हर लाह लैणी। जो जपदे हर हर दिन सरात, तिन हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु का, जिन मेरा हर सज्जन मिलया सैणी। जिन्ना मेरा सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जान देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु का, जिन मेरा हर सज्जन मिलया सैणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जप जी साहिब एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुरप्रसाद जप आदि सच युगादि सच है पी सच। नानक होसी पी सच। सोचै सोच न हो गई जे सोची लख वार। चुपै चुप न हो गई जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। सहस स्याणपा लख हो है ता इक न चलै नाल। किव सजियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै बड़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। इक न हुक्मी बख्शी सो इक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मै जे बुझै ता हुम्मै कहै न कोय।

पाओ खला गंध बताओ पांडा पाओ अमृत तटाल कड़िया सब सजी टकसाल जिनको नदर करम दिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महात देवसरा दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाच धर्म हदूर करमी आपो अपनी के निड़क दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।

मुन गण प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड अलेश कर्म अदृश धर्म सर्व प्रणाड्यान रडभड्यान चाचरी शंद तव प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारे पारे हरियंग करियंगे कामे भजंग प्रयात छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर धाने चतर चकर जाने चतर चकर वरती चतर चकर भगुते सुयम पव सुभंग सर्वदा सर्वजोते चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर धाने चतर चकर जाने चतर चकर वरती चतर चकर भगुते सुयम पव चतर चकर वरती चतर चकर भरती चतर चकर बाले चतर चकर काले चतर चकर वासे चतर चकर वासे चतर चकर माने आए चतर चकर धाने आए चाचरी छंद ना सत्रह न मित्र न परम न पितर न कर्म न काय जन्म न जाय न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दिशा कर भगवती छंद तक प्रसाद कासते क्या सच देश है क्या बिज पेश है क्या गंज कर्म है क्या पंज परम है क्या बिज लुक है क्या दत सुख है क्या दूत वर्ण है क्या विभूत कर्ण है के राजम प्रभा के धर्म तो जाए के अशोक वर्ण है के सर्वा वर्ण है के जगत ग्रति है के शत्रु क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुभव रूप है के आदो देव है के अप देव है के चित्रंग बहन है के कह दीन है के रोजरिया कर ही मेरे हा कह के भाग वे अब है के गैबुल गैब है के आप बुल गुना है के शाह शाह है के कारण को नहदा है के रोजी रहदा है के राज करीम है के करमंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र भावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेश है के सर्वत्र काल है दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जापे है के सर्वत्र थापे है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग भीम है के आकल अलम है के साहब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है श्री कदम धाम है गरीबल सकता है गरीबल प्रस्ता है बलंदल मकान है जमीन जमान है तमीजल दमाम है रजोल दान है हरीफल जी मैं जाके जगीना नेगल दरंग है बे बेगा बंग है अजीजल निवाज है गरीबल खराज है द्रौत स्वरूप है त्रमोत बबूत है प्रभोत प्रवाह है स्वयं सुधा है समातल सलाम है सैबल काम है निर्बाध स्वरूप है गाधन रूप है अंगाध रूप है नाद स्वरूप है नंगी अनाम त्रिपंगी त्रका में त्रिभर्ग त्रिभाध्य गंजे अगाधे शुभंग सर्वभाग्य सुसर्वान रागे त्रिभु स्वरूप है सज है सुदायक नरकंग प्रणास है पृथ्वी प्रवास है निरोक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है निरोक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रज्योत अनूप है चाचरी शंग अपंग है अनंग है वेघ है लेख है परम है कर्म है नाद जुगाद है अजय है पय भूत अतूत है अनास है उदास है तंद है बंद है अभक्त है विरक्त है नाश है प्रकाश है निजंत है सुरंत है लेख है देख है अलेख है पेख है टाय गाय असंभ है गंभ है नीला नाद है नित स्नेत जात है जात है चरपट छंद तव प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल शांतता प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं बभूते परमार्थं परमार्थे सदा सर्वसाथे एकाद स्वरूपे निर्बाध बभूते अनंगी नामे त्रिभंगी त्रकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाता न माता न जाते न पाते नरसाकं श्रीकामे तो मेघ है सदैव प्रवाह जय जय भगवती शांत तव प्रसाद के जहर जूर है।

मुन मन प्रणाम गुरु गणम धाम हर भर गांजु हर नर पर पांजु अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खांडु भर नर मांडु अन पवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मधाम अंश जे अंग आसन अपांग उपमा पार गत मित्र धार जल थल मांडु देश विश्व पांड जल थल महांत देश विश्व बेअंत अन पवनाश उदर तर तुरार आ जन वाह कैसदा हो अंकार याद गदनी अनाद कालखंड ख्याल गुर भर अकाल गुर कर प्रणाम ज चरण नाम अंश जगात अजज न बात अंठ निगात अंधरंज बात अण टुट भंडार अंठ ट पार अडीट धर्म अण अटीठ धर्म अण ब्रण नंत दाता महंत हर बोल मन छंद तब प्रसाद करणालिया है हर कालिया है खलखंड रहें मंडल है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है द्रत के धरण है जग के कारण है मन मान्य है जगदान्य है सर्वंगवार है सर्वंकार है सर्वास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मंड से है खलखंड से है परते पर है करुणा कर है अजप जप तप थप है अकृत अकृत अमृत अमृत है अमृत अमृत करुणकृत है अकृत अकृताकृता तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृता अमृत अमृत है जपकृत है अमृत अमृत है निर्नायक है कलकायिक है विश्वंपर है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पाप पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जास है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे नमो परम दत्तंग दत्तंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग बपुते चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र पुगते सुयम पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुखालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग बपुते सतनाम श्री वाहिगुरु जी तागपुर सास्वये एक ओंकार सतगुर प्रसाद तव प्रसाद सोइए पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सुधान के देख बिरो कर जो जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधार सत समूह संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को दीखित प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते करती विनय करती के मात्यो तंग जन जर संग अनुको तंग सुरंग सवारी कोट तिरंग कुरंग से गुरत पौन के गौन को जात नवारी पारी पजान के भूप बली विदन आप शीस न जात विचारी अते पय तु काम पय भूप अंत को नंगी पाय पदारी जीत फिर सब देश दुसान को बाजत टोल मृदंग नगारी गुंजित गूढ़ गजान के सुंदर हैंसत है हजराज हजारी बूद वैख भगवान के बुबद कौन गण नहीं जात विचारी शरी पा शरी भगवान भजे बनंत गंत के धाम सुधारी तीर्थ नान दैद मदान सुसजो ने मन एक सिख है वीर पुराण देव कुराण जमीन जवान सवन कपिख है कौन हार जदि हजार सब सब चार हजार के देख है श्री पा श्री भगवान भजे बन उपदे कर दिवन एक नाल देख है शुद्ध सुभाव दरंत दास सास नादर जान दलाएंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत बंखारे नहा लेंगे तोर हरीन मरोर मवासन माते मंदगन मान मलेंगे सरी पा सरी भगवान कृपा बेन त्याग जहान नदान चलेंगे वीर पार बटे बरियार बचारे सार की दार बछैया तोर तुरे समलिंद मवासन माते जान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़ नहार सो बात नहीं जग चार रवैया सा श्री सब को सरनायक जाच का एक जाच का एक अनेक दवैया दान अवदेव नंदन साचर जाचक अनेक सो एक दवैया दान अवदेव नंदन साचर भूत भविख भगवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पली पल में सब साफ सपेंगे
पौन प्रतापन बाढ़ जात तौन पापन के बहुपुंज खपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिर जग सदर सब अवलोक अवलोक जपेंगे। मान वेंद्र चंद्र नाद बचौंद्र गौराज करेंगे। गोड़ गोपड़ा कोट स्नान करेंगे। कदान अनेक स्वयं प्रसाद भरेंगे।

उठ गए, बैठे वक्त ध्यान लगायो, नहात भरे नहीं सात समझ रहना, लोग गए पर लोग गवाए हो बास के ख्यान तो बैठ गए, ऐसे ही ऐसे सुबह बतायो, साच कौन सुन ले सब है जन प्रेम की उदय नहीं प्र पायो, काहू ले पावन पूज धरियो सिर, काहू ले लिंग करे लटकायो, काहू लख वरवाजी दिशा में काऊ पिछा को शीस नवायो, कौ बतान को पूज है बास को मृदान को पूजन तायो, गुर करे और जो सभी जागो, श्री भगवान को भेद न पायो, को बतान को पूजत है पास, को मृदान को पूजन तायो, अंकुर करे और जो सभी जाग, श्री भगवान को भेद न पायो, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पातशाही दसवीं का विवाच बेनती जाओ पई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दोष्ट सब तुम काब हो, आप हाथ दे मोहे बचाव, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करें, सब वैर न का वाज करें, पूर्ण होए हमारी आशा, दूर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न जाऊं, जो भर चाहूं सो तुम दे पाऊं, सेवक से कह हमारे दारिये है, चुन चुन सत्र हमारे मारिये है, आप हाथ दे मुझे भरे हैं, मरण काल का द्रास में भरे हैं, हो जो सदा हमारे पक्षा, श्री अस्तु करे हो रक्षा, राख ले हो मैं राखन हारे, साहे संत साहे प्यारे, दीन बंद दर्शन के हंता, तुम हो प्री चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बब धरा, काल पाए सब जीव अवधरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल योगी सब कियो, वेद राय ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार ताहि हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दंत जशन उपजायो,

ऐसे मार्ग पावै कारु गहल हो ओढ़ निभावै। कहां बुझार ते बूझै डोरा निस कहिए तो समझै पोहरा। कहां बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो पीहि सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गमन। करतार करुणामय दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सो आवै ना चीते जो बैराई तासो प्रीते बलुआ के गृह।

मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपसूपर कर्तुकमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जाप जाप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण परंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरहे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्र रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मान पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास रेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब

जिह प्रसाद बसह सुख मंदिर तसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरह ते सरसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहिया त्यामन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हडावह तसह त्याग कत अवर लुभावह जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुख ताको जस रसन बखान जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन

पलायन साध सांग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कछ कहाल दर्शन भेट होत।

सूर सर्व कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी का तिहरे जो एक जो बसधा को खोद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नानक जो पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी का माने हुए प्रकाश जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा मन

करीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार ओमाह ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तहवत बंधा ब्रह्म ज्ञानी का हुए सो फला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी सांग सगल उदहार नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी का एकाय रंग ब्रह्म ज्ञानी का बस प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सर जागत ब्रह्म ज्ञानी हूँ बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी का मान परमानंद ब्रह्म ज्ञानी का कहर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी का होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइए ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी के मेत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गाते ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सर जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सबू परिहाथ ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक उरत हरे जो अंतर नाम सर्व में पेख भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानक हो अपरस सकल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप ना पेख नेत्र साध की टहल संत संग हेत कर्ण ना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हर मन की बासना मन ते टर इंद्री जेत पंच दोख दे रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न मिशन की माया ते हो पिहन कर्म करत हो निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाच केवल भगत कीर्तन संग राच मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावे नानक हो वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनस सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म सार संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत ऊतम होवै भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्प विष्ण प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म में शोध राम नाम सार रस पीवै उस पंडित का उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जोन न आवे वेर प्राण सिमृत बूझे मूल।

कोटे नाम रस पीव है अमृत है सद सद ही जीव है कई कोटे नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन का सासे सासे समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण जल थल मही अल सोए अष्टपदी करन करावन करन जोग जो तिस भावे सोई होग खिन मह थापे उथापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तहार अतहर रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देख अपनी वडियाई नानक सब मह रहया समाई प्रभु पहावै मानुख गत पावै प्रभु पहावै ता पाथर त्रावै प्रभु पहावै बिन सास्ते राखै प्रभु पहावै ता हर गुण भाखै प्रभु पहावै ता पतित उधारै आप करै अपन विचारै दुहा सिरिया का आप स्वामी खेल बिकस अंतर जामी जो पहावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या होय आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ होय ता सब किसे ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत बिख्या मह रचै जे जानत आपन आप बचै परमे भूला दह दिस पावै निमख माहे चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपने भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन महनीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्टि कछु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखाना गणै जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास कहट कट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बाल नाही इस हाथ करम करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फन थियो कभू ऊच नीच मह

कबहू ताट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परम परमिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभु पहवै तवै नचावै, ज्यों तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग तिहो पावै, उस अस्थान ते बहर ना आवै, अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस अस्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते कर अंग, सदा बसह पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मह जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सर कुर्बान। स्लोक।

अष्टपदी जिसका अंतरराज अभिमान सो नर्कपाती होवत स्वान जो जाने में जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरह भव जोन परमावे तहन भूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानक यहा मुक्त आगे सुख पावे तहमानता हुए कर गरबावे तृण समान काशे सांगे ना जावे बहुलस्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मह हुए जाए पसमंत कसना बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी।

संत के दुखी को दान लागै, संत के दुखी को सब त्यागै, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी जन्म मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत पहवै ता लय मिलाए, संत का दुखी अध बीचते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी का उद्यान परमहिया, संत का दुखी उजड़ पाइया, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पहवै ता लय उबारे, संत का दुखी ओं बिल्लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पावक ईंधन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, जो बुआड़ तेल खेत माहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जोत सपहवै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरै ना जीवाइए, संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना त्रिष्टै कोई, जैसा पहवै तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, सब कर तिसके ओह करन हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तते करहो दिन रात, तिसहते आवह सास गिरास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करन हार, दूसर कौन कह बीचार, जिसनों कृपा करै तिस अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तजहो स्यानप सुर जनहो, सिमरहो हर हर राय, एक आस हर मन रखहो, नानक दुख भरम पहो जाए, अष्टपदी मानुख की टेक बिरसी सब जान, देवन को एक भगवान, जिसका दिया रह अघाए, बहर ना तृष्णा लागे आए, मारे राख एको आपे, मानुख कै किछु नाही हाथ, जिसका हुक्म बूझ सुख होए, जिसका नाम राख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोए, उस्तते मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो।

संत है संग चाल अवर त्याग लिखिया जंजाल तहन तहन कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए इहो वापार विरला वापार नानक ताक सर बलिहार चरण साधके तुहे तुहे कियो अर्थ साधको अपना जियो साध की तुहरे करो स्नान साध ऊपर जाइय कुर्बान साध सेवा बड़ भागी पाइय साध संग हर कीर्तन गाइय अनक बिघ्न ते साधु राख हर गुण गाय अमृत रस चाख ओट गही संत है दर आया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देवत आधार सर्व निधन जाके दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका हो करना जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब ते ऊच निर्मलेह करणी कर कृपा जिसका नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाकर मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिया तिहो लोए जाकर हृदय एको होए सच करणी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्टि साचा आकार सच वर्त साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता सलोक रूप ना रेख ना रंग केश त्रिहु गुण ते प्रभु पिहन।

दाना घर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद, साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन इहो अनराओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग हरन।

एक करहे करंग नाना भेद की नो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कह तिसके सब तिसके ठाओ जाप जाप जीवै नानक हर नाओ नाम के तहरे सगले जंत नाम के तहरे खंड ब्रह्मांड नाम के तहरे

अष्टपदी संत जना मिल करहो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसारहो चरण कमल हृदय में उर तारहो कर्ण कारण सो प्रभ समर्थ दृढ़ कर गह हो नाम हरिवाथ इहो तन संचह हो वह भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखह मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन का चार कुंट उठता वह सो तहनु हर सेवा ते पावहे जिस सुख का नित बाचह मीत सो सुख साधु सांग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनको पावी रोग ना जाए रोग मिट हर अवख दलाए सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दरगह प्रवान मन प्रबुद्ध हर कह नाये दह दिस तहवत आवैठाए ताको बिघन ना लागे कोए जाकर दह बस हर सोए काले ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पहो बिन सह पूर्ण होए आस भगत पह आत्म प्रगास तित कहरे ज

जब अकार इहो काचन दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता। जब तहरी अपन सुन समाधे तब बैर विरोध के संग कमाते। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्ख सोग कहो किस है व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। अपन खेल आप वर्तीजा नानक करन हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकते कहो केत उठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तह तब कवन निडर कवन कत डर। अपन चलते आप करन हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरन कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पुष्ट लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरुष पाते होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसह भूख कवन तृप्तावे। कर्ण करावन करन हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेदक तेव कहा को चीन। जब अपन आप उरत हर तो सगन अपसगन।

चेद अपेद समाया उहां किसह व्यापत माया। आपस का आप है आदेश, तेहो गुण का नाही परवेश। जह एक है एक, एक भगवंता, तह कौन अचिंत, किस लागे चिंता। जह अपन आप, आप पति यारा, तह कौन कथ है, कौन सुनने हारा। बहो बेअंत ऊचते ऊचा, नानक आपस को आप है पहुचा। जह आप रच्यो प्रपंच आकार, तेहो गुण मह कीनो विस्तार। पाप पन तह पही कहावत, को नरक को स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल, हमे मोह परम भय पहार। दुख सुख मान अपमान, अनेक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप, जह पसरै पासार। संत प्रताप दुहु पाख का आप है धनी, उनकी शोभा उन्हु बनी। आप है कौतक कर अनविचोज, आप है रस भोगन निर्जोग। जिस पहावै तिस आपन नाय लावै, जिस पहावै तिस खेल खिलावै। बेसमार अथाह

जो रचियो सो तिस हत्याहाते। जिस पहवै तिस लै मिलाए, भगत करह हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करनहार नानक एक जान्या। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक का सेवा बन आई, हुकुम बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार, जाकर मन बसया निरंकार। बंधन तोर पहे निर्वैर, अंधन पूजह गुर के पैर। इह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले। सार संग मिलकर हो।

आठ पहर प्रभु पेखह नेरा मिट अज्ञान बिनस अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो फलत पलत दोए लिहो सवारे राम नाम अंतर उर तहारे पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच प्रीखिया मन तने नाम जपहो लिवलाए।

था सगल सुमिग्री एक स घट माहे अनकरंग नानां दृष्टाहे नवनिद अमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देख्या जिस आप देखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कहट कहट ब्याप रहया भगवंत।

आप छोड़ बेनती करहो सार संग अग्न सागर तरहो हर तन के परले हो पंडहार नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जियो का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलेक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाह दवाजय सोने सोने अमद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरेन अमृत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बेकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तहरी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तते करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्विच्छाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट

0: हम दा जान पचास बरसा अच्छा राज के राज कमाए गया। श्याम हम क्यों याद करते हैं, ओदे इंसाफ दी अज भी सच्चा है, ओदे न्याय दी अज भी लोग तारीफ करते ने, वड़ियाई करते ने। कहने एक बारी कुछ लोगों ने मिलके महाराजा साहब पास शिकायत की थी, कहन लगे सरकार आ जेड़े मुसलमान लोग ने सौनी नहीं देंदे, आराम ही नहीं करन देंदे, क्यों की कारण हो गया। कहन लगे बस उच्चे मनारे ते खलो के दिन विच पांच बारी रोज कहने अल्लाह अकबर, ते मतलब एदा ओही है सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। अल्लाह ही वड्डा है, अकबर दा अर्थ है वड्डा, अल्लाह ही वड्डा है, उस अल्लाह दे बरोबर कोई होर हो नहीं सकदा, बाकी सब छोटे ने। वड्डे कियां वड्याइयां किस कहना कहन ना जाए, वारासा महला पहला। जी ये ते तंग करदे ने, आराम नहीं करन देंदे, भला इन्हां ने नमाज पढ़नी है ते लोगां नूं सुनाण दी की जरूरत है, इन्हां नूं नमाज पढ़नो बंद कर दियो। हुण वड्डियां कन्नां वाला महाराजा नहीं सी, सुनी सुनाई किसे दी गल ते ओह एक्शन लै लैंदा, ओदे ते अमल करदा, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, मैं बुला लैंदा हाँ, तुहाडे नाल सलाह कर लैंदे हाँ, उन्हां नूं भी बैठा लैंदे हाँ। मुसलमान मुखिया ने बुलाया, कहन लगे आ कुछ सिख ते कुछ हिंदू तुहाडी शिकायत करदे ने। जी की अखे तुसी उच्ची बोलदे हो अल्लाह अकबर, एदा मतलब की है, मुनारे ते खलो के आवाज देना। वह कहन लगे जी जदों नमाज का वक्त हुंदा है उस मौके ते नमाजियां नूं सद्दा देईदा है, आवाज दे दिए भाई वक्त हो गया आओ मिलके इबादत करिए। कहन लगे बस एहो ही काम है ना कि ये सद्दा दिता जांदा है। उन्होंने कहा हाँ सरकार ये सद्दा है। कहन लगे ये जेड़े भरा शिकायत करन वाले ने जे तुहानू सारिया नू नमाज दे वक्त बुला के लाया या करन, तुहानू कोई इतराज तो नहीं? फिर ते तुसी उची उची नहीं कहोगे। कहन लगे सानू कहदा इतराज है, वो ते वांग दिती जांदी है कि नमाजियां नूं पता लग जावे वो नमाज वास्ते मस्जिद विच पहुंच जान। सहमत हो गए महाराजा साहब, कहन लगे लो साडे मुसलमान भरावां ने तुहाडा ये विचार प्रवान कर लिया है, वो उची बांग नहीं दिया करनगे, पर तुसी सारे वारी बन लवो, जिनी वारी नमाज मुसलमान सज्जन पढ़न वास्ते जांदे ने उन्हां सारे नमाजियां नूं दिन विच पांच वारी तुसां बुला के लाया करने। तो वो कहंदे ने आपे फसड़िए मैन कौन छुड़ावे, आपे ही फस गए सन, आपे ही उलझ गए सन। तो जिस उन्होंने उस वेले बड़ी खुशी खुशी प्रवान कर लिया, कई गल्लां सी सहजे ही पहला समझते नहीं, पहला हां कर देंदे हां, हाथ भी खड़े कर देंदे हां, चल लख श्री वाह, लख लख दो दो लख पर्ण पत्र भी भर देंदे हां, वह भी अकाल तख्त साहब के सामने खलो के चल लख श्री वाह। पर जो वक्त आंदा है चकुए थे जो कुनके के भाग गए सब लगते ठुनका, पंथ प्रकाश ज्ञानी ज्ञान सिंह जी, इन्होंने कहा जी ठीक है असीं बुला लियावांगे। जदों दो तीन दिन गुजरे कहन लगे ते वक्त पा लिया ये बड़ी मुश्किल हो गई, फिर की कीता जावे। फिर सारे रल के महाराजा साहब पास आए, कहन लगे महाराजा साहब असीं साडे तो यह काम नहीं हो सकता। कहन लगे क्यों बई, तुसीं हुण आराम नाल सुनो, ओची तुहानू जगांदे नहीं बुलांदे नहीं, वो अपनी चुप करके नमाज पढ़दे नहीं, हुण वी तुहानू कोई एतराज है? कहन लगे जी नहीं, उन्हां नू कहे कहो पहले वांग ही बांग दिया करन, सानू बांग देन ते कोई एतराज नहीं, वो अपने तरीके नाल काम करन। तो जेड़ा कोई अच्छे तरीके नाल न्याय करदा है इंसाफ करदा है लोग अज भी उन्हू याद करदे ने। फकीर अजीजुद्दीन और उन्हां दा परिवार अज भी महाराजा रणजीत सिंह जी दियां दितियां हुईयां चीजां नूं संभाल के रखी बैठा है, छाती नाल लगाई बैठा है, ते नाले याद करदा है कदे पंजाबियां दा महाराजा वी सी प्यार लखो श्री वाह। तो बेनती कर रहा था कि तेरा कि अजब से इंसाफ हम सफा, तेरा जो न्याय है तेरा जो इंसाफ है वो बहुत अजीब है, ई हम सफा इसकी जो तमाम सिफतां ने वो भी बड़िया अजीब हैं, बहुत अजीब किस्म दियां सिफतां ने, क्या तेरे इंसाफ दियां, जेहो जा तेरा इंसाफ ओहो जियां ओदियां सिफतां जी।
1: ਅਜਬ ਅਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਰਵਰੀ।
0: ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਬ ਅਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਰਵਰੀ, ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਦੀ ਦੀਨ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਦੇਤਾ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਵਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
1: ਜੀ। ਹੈ ਬਸ ਸਦ ਹੈ ਫਈ ਸਰਵਰੀ,
0: ਹੈ ਬਸ ਸਦ ਹੈ ਫਈ ਸਰਵਰੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸਰਵਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਸੌ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਉੱਪਰ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਭਰਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ।
1: ਅਜਬਸ ਤਕਵਾ ਸੁਮਾ।
0: ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਫਤਵਾ ਸੁਮਾ। ਚਾਨਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਕਿ ਅਜਬਸ ਫਤਵਾ ਸੁਮਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਥੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ। ਚਾਨਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੁਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਫਤਵਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਬਾਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਵਰਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੁਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਤਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਉਲਮਾਵਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ, ਤੇਰੇ ਉਲਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ।
2: Thank you for listening to CISK Sikh Radio 94.3 FM, broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singhsabha2@gmail.com, singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

प्यारे श्रोतियों कभी विचारिया है कि सिखी विरसे दे बानियां ने इस बाणी नूं अपनी बाणी नहीं सगों तुरकी बाणी क्यों आख्या है? क्योंकि इह परमात्मा दी सिफत सलाह दी बाणी है अते अकाल पुरख ने

संत जनो परमात्मा दी सिफत सलाह दी बाणी जिस मनुख दे अंदर आ बसी उसने अपनी सारी चिंता दूर कर ली। हे नानक दया दा सोमा प्रभु उस मनुख उत्ते मेहरवान होया रहिंदा है जो मनुख उस सदा कायम रहन वाले प्रभु दा नाम उचारदा है। श्रोता जन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन रचना स्थापना महानता अते विशेषता केवल सिख कौम जा दूसरे हिंदुस्तानी भाईचारे तक सीमित नहीं सगों ए समूह मनुख जाति लई गुरु साहिबान दा धार्मिक तोहफा है अते समुचे संसार दे धार्मिक इतिहास विच अपनी मिसाल साफ है। गुरु अर्जन साहिब जी ने इस ग्रंथ की संपादना करके इस धर्म ग्रंथ नूं सिख धर्म अते इसके श्रद्धालुओं तक ही सीमित अते विशेषित नहीं किया। असली मायनों विच समूह संसार अते समुची मानवता के सर्व सांझे हित लाभ उन्नति अते कल्याण नाल इसका संबंध जोड़ दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना केहो जिहे समय अते क्यों गुरु साहिब जी ने कीती इस नूं समझण लई ले जाओ अपनियां विपत्तियां नूं 15वीं सदी दे हालातां वल अते विचारो उस अजोके समय नूं जदों हिंदुस्तान दी धार्मिक राजनीतिक अते समाजिक व्यवस्था अपनी अजोक्ति दे शिखर तक पुजी हुई सी। मौके दे हुक्मरान मुगल बादशाहां दे जुल्म दी कहर सिखरां ते सी। बोधी जैनी अते हिंदू मत दे धार्मिक अपनी हिफाजत करन विच असमर्थ सन। उस समय दा समाज वख-वख जातियां धर्मां अते इलाकियां दे विषय उपर आपस विच वंडिया होया सी। इस वंड कारण समाज संगठन वास्ते कोई केंद्री तुरा कायम नहीं सी जिसके सिट्टे वजो विदेशी हमलावारां वास्ते खिलरे पुलरे असंगठित समाज नूं गुलाम बनाना बहुत सौखा सी। अजिहे अंकार समय भारतीय समाज की अपनी सदियों पुरानी पछाण खुरदी जा रही है। जल जल अते जमीन मालकां दे हत्थों खिसकण लग पए सन। हौली हौली समुचे भारतीय समाज नूं अपनी होंद गुआचती महसूस होण लगी। श्रोतियो इस संकट नई स्थिति का मुकाबला करन वास्ते समुचे भारत विच संत परंपरा ने जन्म लिया। वख वख इलाकियां दे संतां भगतां ने धर्म अते जाति दे नाम तों पैदा हुईयां वंडियां नूं दूर करके समुचे भारत विच इक सर्व सांझा समाज उसारन वास्ते आवाज बुलंद कीती अते मानव मुल्लां दी प्रमुखता नूं स्वीकार करन ते जोर दिता। दक्खण तों उठ भगती लहर उत्तर वल पत्थर

पर गुरु परंपरा इस भक्ति लहर तो पूरी तरह प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि गुरु परंपरा अति भक्ति संस्था के मुख्य आधार सन, परंतु समय दियां परिस्थितियां सांझियां सन। उत्तरी भारत विशेष करके पंजाब की धरती विदेशी हमलावरों द्वारा पूरी तरह नाल लताड़ी जा चुकी थी, इस सभ्याचार पूरी तरह नाल खत्म करने की नीति चल रही थी। दक्षिणी भारत का सभ्याचार

होस्ट हो रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वेस्टर्न सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। जेकर तुसी अपने रेडियो सेट हुने ही ऑन कीते हन तो आप जी नूं याद करा दईए कि अज का प्रोग्राम समर्पित है गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश दिवस की याद में। श्रोतियो, इस अमृत वाणी नूं पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहिब जी ने 4 सालां विच संग्रह करके सिखां नूं पोथी परमेश्वर का थान दे दर्शन करवाए। पहले 4 गुरु साहिबान की दरगाही बाणी दियां पोथियां गोइंदवाल साहिब बाबा मोहन जी

0: लाल साजी बोल बोल
1: की सबका बोल बोल
0: लाल साजी बोल बोल की सबका बोल बोल लाल साजी बोल बोल तन तन किसी है कमाई से खाल दे तन तन

दर्शन की प्यासा करनी पावे मन पाईऐ मेरे ठाकुर हाथ बढ़ियाईया भाणे पत पाईऐ साचों दूर ना जानिया।